गारक बदगी माई कई मई मालियम चुथियंगी पान सुंदाई मापन दलई बाऊ उरी नौ पाल हई पाल तला न पामेल वांग।

ठंग दांजरी बैसे ऐसी खुमन थेम प्रकाश की मैं एकता येंसेंबम बिलाशिनी नसक बने खन भी रखी बना हाइरोक पार्ट टू दगी खुमन थेम सना जाऊबा नोमाई थेम प्रेमानंदा अमदे नोमाई थेम सुभाष चंद्रा

अरोग्य अनि शुभोइनता बिरसी मन्दाकी नियमदे सदानन्द अनि पुनः सक्मिनबा इसैयमा इसैयसिगी सैरेङबा अरुण कुमार अखाम सैराङबा सोरी सन्जोङ

ताहन जक्रीबा इसे सिंग असिगा लोई दाना फिल्म मगी इसे दा लाइबक की चंदन फिल्म असिगी इसे सिंग लान थुक चबा मतांग असिदा लो शिंजरी

रेडियो क्लास समग्र शिक्षा मणिपुर ना क्लास थ्री दिगी क्लास एट फाउंड तमलीबा महिरोई सिंगी निमित खुदिंगी तोंगांग तोंगांग द सब्जेक्ट सिंगी दमक रेडियो क्लास संदोकचरी अयुक पुंग तरुक मिनट निफु अमदी नुंथिल पुंग ओहु मिनट कुंथा मंगा द संदोकचरी बा लेसन सिंग से संगाई चैनल अमदी आकाशवाणी इम्फाल के यूट्यूब चा लाइव ओइनसु ताब फंगदिगनी महिरोई कयाना लेसन सिंगी क्विज द सरुक यादुना सेलगी मनासु फंगनखरे पारासु खंगौबा मनासु फंगबा कानब लहौसी वहांग सिंगी पाखुम पिजरीबा मोबाइल नंबर 9378120495 ता व्हाट्सएप की खुथांगदा योहन बिलौ खंगजिन बिगदबा अमना अदोम की पाखुम अदु वहांग हंगजब नुमित अदु मक्तदा हाइबदी एपिसोड अदु संदोपु नुमित अदु मक्तदा अइखोइदा पाखुम थाबिरकदबनी

धन्यवाद सोनिया। यह आकाशवाणी इम्फाल का शांघाई चैनल है। 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। मैं वाइकोम सिंह खैंगानबा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं 2015 में रिलीज हुई फिल्म तमाशा सिलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में इस गीत के साथ। गीतकार इरशाद कामिल और संगीत AR रहमान का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म खामोशी से हरिहरन और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत जतिन ललित का।

अभी आपने सुना फिल्म जब वी मेट से मोहित चौहान का गाया गीत, गीतकार इरशाद कामिल और संगीत प्रीतम का। साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के संगाई चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गीतमाला। अब सुनते हैं फिल्म बदलापुर से रेखा भरद्वाज और अरिजीत सिंह का गाया गीत। गीतकार है दिनेश विजान एवं प्रिया सरैया और संगीत सचिन जिगर का।

साथियों, इस गीत के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए हाजिर है गुरुमयम सोनिया। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक मणिपुरी मरुओइब पाउ ताबिरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक फाउबोंगी मरुओइब पाउ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोसेम ने लौब कुमसी चाहि की मेट्रिक परीक्षा की पोल ngasi नुथिल पुंग उम ताब मतम द विभाग असि ऑफिस द लौथोक लगनी थरम मदु द राज्य की एजुकेशन एस के कमिश्नर हिंग थौजम जियो फ्री एजुकेशन एस के डायरेक्टर एन जी बोगेन रमिते बोसेम की सेक्रेटरी एस जितेलाल अमसुम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आयाम थोई सिंह सरुक याकनी मालेंगे तो मफम सिंह पांग थोकनाबुम अची मणिपुर द मालेंगे रेड क्रॉस निमित पांग थोकली निमित असि की हिरम ना यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी हाय बिचिनी इम्फाल वेस्ट जिला की ओर लंबे खुनान खुंग नेता जी सुभाष चंद्र बोस आभासिया विद्यालय पांगी नॉर्दर्न रेलवे चलाब रेलगारी नौ साजिब ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवर्स हाब इंडियन रेलवे अयाब पीकरे लुपा कोटि चहुम हूंफुनीथ चेजन साजिगद प्रोजेक्ट फिरोजपुर जम्मू डिवीजन फाव की किलोमीटर चाब्री हूद्रा निपान सांब रेल ताली कवर सिस्टम हाब यावरी डीआरडीओ इंडियन एयरफोर्स भारत साजब टेक्निकल एडवांस रेंज ऑफ मेटेंशन तरह की चांगे ngarang उड़ीसा की समुद्र खोबान माइ पाना पांथोरे तरह पाई माइक होंब याद मिसाइल मखल ग्राउंड कंट्रोल माइक होंब यागनी यूएस की फेडरल कोर्ट अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की पुसल पोलमी मधक् चाद तरह की तारीफ लोब की वारेब आईन याद थोने कक्तरे यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने राय लौथोलन तारीफ अब चलने ट्रेड एक्ट लिंगन हूद्रा मरी सेक्शन चाम कुनीथ की वादनी चाइना की यूनान प्रोविंस बमुला

0: ऐशु खर आओगे।
1: रुबरागागि सैसकप सिंगन सकप बीजेंट कुमार शर्मा सैरेंगब मदमिसै मताबिरी मथंगदा मु कुदोल तौचरी लाइश्रम तोंबिना सकप मुटवा तोंबना सैरेंगब मणिपुरी मतमिसै।

0: အာကာရှ်ဗာနင်ဖာလ်ဟိုဇေနူမီတောင်ဝရံဂီပုံမငါတာရီမနီပူရီတပေါတာဘီရစီ
1: အာကာရှ်ဗာနင်ဖာလ်ဟိုဇေဖော်ဖိုဂီမရူဝေဘပေါဘော့ဒ်အော့ဖ်စကန်ဒရီအေဒူကေးရှင်းမနီပူရ်ဘောဆေမနလောဘကွန်စီဇေဂီမက်ထရစ်ပရီခါဂီပေါလ်ငါစီလောက်ထိုခရေမိုင်ရီဆာဒ်မန်ဖူနီပန်ဒက်စမီတာဒက်မနီပါစတိုခီစဟီအရှိကီအိုအိနနူပါမဟီရီရှင်းနဆာဒ်မန်ဖူနီပန်ဒက်စမီမပန်ဖန်ဒနာနူပီမဆာရှင်းနပါစတိုဘီဂီဆန်Sada marpuni pan dasmik teruk tagi henki. Sandil jila da mahiroi satruk marpuni pan perikatha bada satruk mudra pas tau duna kwaite gi wang bat jila oike. Perikagi pol lakthok na duna bosengi sekretari S. Jitelal Sharman hai bod namatang sahidagi di perikaloi benumitagi hau duna evaluation tau bagi thabok paikat lagani masina. Perikah hai tuk pogi matam tension duna mahiroi sing da makoin na tamning ba subject sing khanza bada kudong zaba piragani.केंद्र की पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मन हायरी भारत ना एलपीजी साद मरपुदरा अमसुंग नेचुरल गैस की साद हुंपुमंगा मिंदल इस तगी पुसिलकली होकी बथा खरा असिदा बफम असिदा उंखना बगी पिबम लैदना इंटरनेशनल मार्केट ता सुंगदोक्रीबा थावगी ममल बेरेल अमदा डॉलर मुद्रा ओइरम ब अदु ngasiदी चामकुंदा हेंगटले मरम असिना भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनी सिंग खुदोंग साद ब कया थेंगनरी अदु मियामनाथावगी ममल हेंगतपगी अवाबा थेंगनदनबा सरकाना मपालमदगी पुसिलपा थावद लौरमबा एक्साइज डीटी की चांग हंथरे केलमद मिखल पांगथोखरबा मतुंग कांग्रेस न लुचिंगबा यूडीएफ अलायंस की लुचिंगबा अमा नोमाइजिंग नमित लाखथोक लगनी लेजिस्लेटिव पार्टी की लुचिंगबा असि केलोंगी पार्टी ऑब्जर्वर सिंगना कांग्रेस के नेशनल लीडर सिंगदा अकुपवारोल सिंग पिसिलबा मतुंग खलकनी हाइना पानरी केंद्र की सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने हायरी भारत असी मालेंगे ख्वारी

0: ऐसे पीपल वाइस
1: तू गए कि सुबह चलो तू गए
0: नंग जाए किन सी ना ए फोन तोड़े बना उनका ना है ना करो ना हाँ सार सार किंग बने सार ओ सार गाड़ी की इस चीज़ सांग सुरम दबा अतो चीज़ एक डॉक्टर मने सार
2: क्या मशीन थी मेरे मशीन आज
0: ओ यानी सारा ये बिज़े के
1: सुन बिरो
0: चीज़ तो पायर खो नहीं
1: ओ यानी यानी हेलो अंकल ओके अंकल थैंक यू वेरी मच आप लोग आज रे तो अंकल होगी कौन सी मत अंगो फट बसी था मशी मशी को दिन के कमांडो बी डी एफ में आम सिंह ने उन डिस्टर्ब तो रहा था यार अगर अंकल ऊ सिंह सी मैं तो इन फोक ड्रॉप तो हम भी ना पड़े
2: यार अगर नहीं
1: सीन तो पायर खोई नहीं फोन से
0: यार नहीं नंगा तो लोशन करो यार लोशन करो लोशन
1: सी पायो अध्याय करके अंकल दा
0: छा सारे दी सही थिंजर गए बने मोने याद तो नहीं रिने
2: सा
1: ओ अंकल थैंक यू ओ अंकल जब तुम आ जाओ तुम आ जाओ ऐ बाबा तो हाजिर होइदा ओके अंकल थैंक यू वेरी मच ओके बाय बाय नोंग मेजे के रमने दे पिरोने सर
3: सर यार पिरो
1: ए यार पिरोने
3: ए ए ए कै जुने खंग मु खंग
1: सिंग सिंग तो सो सुन पिरो
3: सो कजी के तो से से से ए अदुले पको
1: ओए अमद दी
3: ओए गीता मसाज रण है सासी दे अंगांग छनन लहुम भत्र सुबा
0: हाय पि पि रे
1: सक्षी जी या सुन ब्रो सुन ब्रो
3: सही तो यमसा ना देखो ना पाई
2: जाय यार ये गाड़ी सोगा तो पि पि ओ से चांग
0: या बा वारो वे देखो मयाम वाली छन ले से भाव हो दे या मते पशम पि
2: आ तो मैं तो करा वारो रो तो पि बुआ ये बोल रहे हो जान फबमी वे ले रे
1: ओ तो
2: आ मैं ये को तो खो सो ब्लाग मा
1: कोई तो बे ला से तो हेलो सर आई गिमिंग अतांग एलाइस थानिल मतुम बनाओ दिने हाँ थे मीद चांस लगे खनरसी ओ अ मई मचा मैं खाद मीपू कुछ हरास पीबी नई कमांडर उदेव कम उम योजे ड्रॉप तो हम कम कम
0: गाड़ी मत से काखीर
1: सर इस गाड़ी फोन नाइजरमगेने सक सिंह जी मुख तुम जी दुई तो लंबी में आई
3: सी मो नंग थिएटर नंग
1: ओय करीब नो जिगदो
3: सक सिंह जी तो जोने मसक जी सो रोई मो नंग हस
0: तुने सिने लोई मांग ये सही दे वो
3: कोई छाजु गाड़ी मसक खग ये तो दी फदो ने गाड़ी अंत लाग उया दी खाम दु गन तो दी करी नु खग्यान ता दी
0: दाओगी वाली
3: पंगे
0: ऊ मैम से गाड़ी मथ से लोई थो थो
3: थलो अमु थो कई पुद्रीजुप
0: नई नपा की मना
3: कई सबने
0: हंग्रबोने कहीं कान दाओ दाओ यादने कना उद चलने
3: कम उरम कहीं
0: कौन दाओ दाओ याद लौचो
3: कई
4: ने सखी सना खुना सेशन की चा नुग सूख्रबो असा पटका खगे पीबी कोहल इने लेबांगली सेशन की हनु भी असोन भी मैबद खर निजन तेबीको खी मासीग्रे अहल जासी अहल होबी अगर ओले है चुम जानीको असबू विक्टर दुब लादे जालो कई लाकनीद अने इनवाइट अस कई कई तमो तौर इसीबो नहारोने खे अंगाने खे मथों मर खब मैंसलो सुब यहां का मसमु मनाओ सका मरम इटा दाखलना नाते अखो तमो
2: कमो
4: तौरीब कई
2: कई दौरगे
4: कना पुसबो
2: तुम्हें तारे कई कई
4: कना लेद्रब सोल अहल ओले सोने हर अंगाउ फैमान पुसलैसीब कनानो तमो
2: तुम्हें तारे कई हमने मा थे यूर कोई वाले आई जी थाना फारे
4: थाना फाई है।

ठौरें राजवेश थोल दन ठौरांग पुन मंगलो रख पकाया आठ निंग ठीचे मैं तेली सिंह हूँ चिंमिली सिंह मरी चाकुम सेना कन्व विष्णु थवल लांगल लांग मिली सिंह मंगा आने ठौरांग तरफ पकाया आठ निंग ठीचे

खुंत्रक पम जीवन की खुंजल दा थिंगबाइजम स्वरण कुमार सिंह न सैरिंग मतमिशेमा ताबिरे इसे इसीबु खोईदान खनबीरकली बना कसारदगी बामचा एलांगबम।

0: आकाशवाणी इम्फाल हाउसे मणिपुर।
1: आकाशवाणी इम्फाल गांगोम किरण पाव पाजरी। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर ने लौब कमसी सही हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मैट्रिक परीक्षा की फॉल गसी लौथोक्रे पास तब की संग चाद मणिपुर निपान दशमिक तरत मरी ओकी परीक्षा सेदम पुनः महिरोय लिसिंग कुंथ्रा तरुक सात कुंतरुक थाजिलक की मनुंगा महिरोय लिसिंग कुंथ्रा तरुक चौंगा हमपुत्रा मापन परीक्षा थाकी मसीग मनुंगा महिरोय लिसिंग कुंथ्रा नितोय सामरी यांखई मापन पास तौकी पास तौकी नुपा महिरोयना लिसिंग तरा तरुक सनी यांखई हमदोयनी नुपी महिरोयना लिसिंग तरा तरुक सनी शुभ तरुकनी परीक्षा से सरकार की स्कूल की महिरोय लिसिंग तरुक चौहम सुन निपान पास तौदना पास तब की संग साद हमपुत्रा तरत दशमिक तरुक अहम ओकी एडेड स्कूल की ना महिरोय लिसिंग अमा चानी निफु निपान पास तौदना पास तब की संग चाद मरफुमरी दशमिक अमा मंगा ओकी प्राइवेट स्कूल की ना महिरोय लिसिंग कुनमरी चमापन सुन अहम पास तौदना पास तब की संग साद मरफुतरा निथोय दशमिक अहम मरी ओकी इम्फाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर के ऑफिस पांगथोप परीक्षा की फॉल लाथप की थौर मद एजुकेशन एस की कमिश्नर निंथोजम जियोफ्री एजुकेशन एस की डायरेक्टर एन जी बोगेंद्रो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की सेक्रेटरी एस जितेल लाल शर्मा सरुक याकी मालेम गई मौम सिंह पांथोनबी मणिपुर मालेम की रेड क्रॉस नुमित पालन थौर पांथोनखी हिरम यूनाइटेड इन ह्यूमेनिटी हैबसीनी इम्फाल की एम जी एवेन्यू दलाइबा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच के ऑफिस पांगथोप वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेशन डे लिसिंग अनी कुंतरु की थोरम सरुक यारदुना इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच की वाइस प्रेसिडेंट आर के निमायना हाय जात कुचुमदि लाइनिंग लाइसुल की खेनब लैतना मियोइबना अवाना तारक पुमतमदा कथोकपग लोइनना मखोय गिदम मतेंग पांगलिबा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की थौमी सिंग की थौदांग असी थोइदोक नथागत निगायनी थौरमद सरुक याकीबा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच के चेयरमैन नरेंद्र निगोम हाई अवा अना तारब मियोयसिंबु कननब सोसाइटी की वॉलंटियरसिंगना मथौ पांगथोप चतप मतमदा रेड क्रॉस के लोगो याउबा एम्बुलेंस सिंगदा अतमनना नुंगाइतब थौदो कया सिक्योरिटी फोर्स न चतब यारुकपसी यामन लाइबुक थिबनी मसी मालेम गथि मफम सिंगदा तौनदब थबकनी स्पियर कोर के जीओसी ना सेनापति जिला की मरामद लाइबा असम राइफल्स की सेक्टर हेडक्वार्टर्स ंगसी चतुन यांसिनख्रे ज्वालामुखी गैरीशन असम राइफल्स की मकोक थोंब ऑफिसर सिंग उनदुना मफम असम राइफल्स ना पाइकलिबा ngaksel की थबक सिंग यांसिनकी असम राइफल्स की पाउन हाय ngarang ayuk भारत म्यांमार ngamkhai मनाक्त लाइबा कामजों जिला की जे चोरो मसुंग नामली खुल की मनाक्त पोखाइबा मसुंग नोमई काप की मखोल सिंग ताबदगी असम राइफल्स की कांगुना थुना संगसिनदुना मफम लेरम मिशम सिंग असोय अंगम यहुंदना साफगत मफम सिंग थांगदोरकी आंग नुपी यौन पुन मई तरम अलोया असम राइफल्स कैम्प तेंबांग पीदुन थमली मफम अकोब ऑपरेशन चतबद मई एम ए के 47 राइफल कौन फारे मफम उंखनब की फिवम लेरीब असम राइफल्स ने कन्न होनरी भारत लार्मी की रेड शील्ड डिविजन की के 9 वारियर्स सिंगसी लेमखों मिलिटरी स्टेशन स्लिटरिंग एक्सरसाइज पांगथोक्रे महुसा की खुदोंथिब थौदोक सिंग मसुंग टेररिस्ट सिंग थेंगनब की थबकता लानमी की हुई सिंग पांगथोप थोदोक हेंदोप सक्तम सिंग एक्सरसाइज अदुदा उत्की कामजों जिला की गमखई खुल नामली वांगली मसुंग चोरोदा अफो मखल की खुलाई सिंग सिजनदुना तमथिनी अटैक तौरखिब अदुबु कोलिशन फॉर इंडिजेंस राइट्स कैंपेन मणिपुर ना यामन कन यानिंगदब फोंदोरकली असिगुम टेररिस्ट की थौंग सिंग असी तुमिन येंगदुना लैब की महत्व भारत सरकार ने मथिक चाव थौक पैकेट पीनबसु लुप असिना तक्सली असिगुम फिम असिदा कांग खुदिमकना अमत ओइन पुनसिनदुना एक्सटर्नल एग्रेशन अमसुंग टेररिस्ट की थौंग सिंग थेंगमिननबसु अपील तौरी तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दसी मेहू लांगपोक थोल्प कमदों थेंगनगने हैबगी

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

दीदार की तलब हो तो नजरें जमा कर रखनी चाहिए, क्योंकि नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। तो आइए आज के हर सिंगार से नकाब हटाते हैं और आगाज करते हैं आज के हर सिंगार का इस प्यारे से अंदाज के साथ, इस प्यारे से गीत के साथ, जो कि है मेरे हुजूर फिल्म से रफी साहब की आवाज में। बोल हसरत जयपुरी साहब ने इस गीत को दिए और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए आगाज करें हर सिंगार का इस अंदाज में।

दोस्त जब किसी की आंखों में अपना अक्स नजर आने लगे तो उसके आगे समंदर की गहराई भी आपको कम नजर आने लगेगी। शायद ये जानकर समंदर भी सोच में पड़ जाता होगा कि किसकी गहराई ज्यादा है। जी हाँ, चेहरे पर हंसी छा जाती है, आंखों पर सुरूर आ जाता है दोस्त, जब इस प्यार में महकती आंखों में आप डूबते चले जाते हैं। आइए ये अगला अंदाज आपकी नजर करते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्यार ही प्यार फिल्म से ये गीत है, रफी साहब की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया शंकर जयकिशन साहब ने।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं हर सिंगार और हर सिंगार में एक प्यारा अंदाज आपकी नजर करेंगे। 90 के दशक से एक ऐसा ही प्यारा सा नगमा आपको सुनवाते हैं जो कि बेहद उम्दा है और बेहद प्रसिद्ध भी रहा अपने जमाने में, आज भी हमारे दिलों की धड़कनों को धड़का जाता है। ये गीत जो कि विजयपथ फिल्म से है, कुमार सानू अलका याग्निक ने इस गीत को आवाज दी। अल्फाज है इस गीत में जमीर कासमी साहब के। जी हाँ, आप जान ही गए होंगे इस गीत में संगीत जो है वो अनु मलिक साहब का है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा गीत, ये प्यारा अंदाज।

कहते हैं कि गौर से देखूं मेरी नजरों में भगवान जैसा दर्जा है तुम्हारा। विजय पथ फिल्म से भी आप ये गीत सुन रहे थे और 90 के दशक का ये बेहद सुरीला बेहद प्यारा गीत अभी हमने आपको सुनवाया। दोस्तों आप सुन रहे हैं हर सिंगार, मैं हूं साथ आपके आपके अपनी दोस्त रोहिणी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कहते हैं नजर से जब नजर मिले तो नजर लग ही जाती है, ले देखे अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से। हम हमारी जिंदगी है, अपना अंदाज है, अपना नजरिया भी रखिए। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं झुक गया आसमा फिल्म से लता जी की आवाज में। इस गीत को बेहद प्यारे सुरीले अंदाज से सजाया शंकर जयकिशन जी ने।

101.1 मेगाहर्ट्ज एआईआर का एफएम गोल्ड चैनल। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त रोहिणी।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 10:54 जी हाँ, ये समय हमें इशारा कर रहा है कि आज के हर श्रृंगार को यहीं मैं समेट लूं और आपसे फिर मुलाकात करूं। जी हाँ, 11:10 पर रेडियो नाटक आवाजों का सुनहरा सफर आप सुन सकेंगे और इसके तुरंत बाद गीत मेरे मन मीत लेकर मैं आपसे जुड़ूंगी एक बार फिर। लेकिन फिलहाल आपको छोड़े जाऊंगी इस प्यारे से गीत के साथ। लेकिन दोस्तों, बेहद प्यारे खूबसूरत अल्फाज साथ ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहते हैं ना, याद आएगी हर रोज मगर तुझे आवाज ना दूंगा, लिखूंगा तेरे ही लिए हर गजल मगर तेरा नाम ना लूंगा। आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार और फिलहाल आज के हर श्रृंगार में ये आखिरी गीत राजकुमार फिल्म से। ये गीत आप सुनेंगे रफी साहब की आवाज में। इस गीत को बेहद प्यारे उम्दा संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा गीत 100.1 MHz पर।

0: भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to be

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में प्रस्तुत है रूपक आवाजों का सुनहरा सफर रेडियो नाटक शोध आलेख स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी। ये रूपक उन कलाकारों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लगन मेहनत और अभिनय प्रतिभा से रेडियो नाट्य विद्या को निखारा और पल्लवित किया और हम इसे उन सभी श्रोताओं को भेंट कर रहे हैं जो हमारे नाटकों को सुनते आ रहे हैं। जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं तब रेडियो नाटक देश में पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। तब मनोरंजन का प्रमुख साधन वो नाट्य मंडलियां हुआ करती थी जिनके प्रभाव से रेडियो नाटक भी अछूते नहीं रह सके। इनमें पारसी रंगमंच नौटंकी और अन्य लोक शैलियां शामिल हैं।
1: देवी मेरी तपस्या में आखिर कहां कमी रह गई? आज मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ?
2: महाराज अब आपको भला मैं क्या बता सकती हूँ?
3: अपने मुंह से भला अपनी कैसे कहूँ?

0: शुरू शुरू में किसी भी नाटककार से रेडियो के लिए नाटक लिखवाना कठिन था, क्योंकि उनकी राय में ऐसा कोई नाटक हो ही नहीं सकता था जिसमें शुरू से आखिर तक बातचीत ही बातचीत हो और सुनने वालों की समझ में ये ना आ सके कि ये बातचीत हो कहां रही है। लेकिन धीरे धीरे वो समय आया जब रेडियो नाटक श्रोताओं को ना केवल समझ आने लगे बल्कि उनकी रेडियो नाटकों में दिलचस्पी भी बढ़ने लगी। आकाशवाणी के जाने माने कलाकार श्री नीरज शर्मा।
1: देखिए, रेडियो नाटक वो फलसफा है जो हमें जीने का पूरा सिद्धांत सिखाता है। हम जो नहीं हैं, वो बनकर जी सकते हैं। और एक बड़ी खास बात है, आप फिल्म देखिए, टेलीविजन देखिए और रेडियो सुनिए। फिल्म देखने के लिए आपको कुछ टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, टेलीविजन देखने के लिए कुछ टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। टेलीविजन की साउंड ऑफ कर दीजिए आप, पिक्चर कितनी देर देख लेंगे, लेकिन रेडियो, रेडियो के जब आप ऑन करेंगे और उस पर नाटक आ रहा है तो आप कुछ भी कर रहे हो, खाना बना रही हो महिलाएं, नाश्ता कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आप, वो आवाज उनके कान में पड़ेगी, उनको सब सुनाई देता रहेगा। तो रेडियो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और नाटक उसका जीवन है, उसका प्राण है, जिसको हमने कोशिश की हम लोगों ने जीवंत रखने की और आगे भी रखेंगे।
0: आदिकाल से ही नाटक, जिसे दृश्य काव्य भी कहा जाता है, भारत में प्रधान कलाकृति के तौर पर माना जाता रहा है। लेकिन इस शास्त्र के साथ साथ रेडियो नाटक के अलग अस्तित्व को स्वीकार करना किसी भी लेखक या निर्देशक के लिए आसान नहीं था। शुरू में बम्बई और कलकत्ता के रेडियो स्टेशनों से कभी कभी नाट्य कार्यक्रम प्रसारित होते थे। उनमें श्रोताओं को उस समय के जाने पहचाने रंगमंचीय कलाकारों द्वारा रंगमंचीय शैली में प्रस्तुत मराठी, गुजराती, बंगला, हिंदी और उर्दू के लोकप्रिय रंगमंचीय नाटकों के अंश ही सुनने को मिलते थे।
2: मैं कुछ अधिक ही बलहीन हो रहा हूँ, आखिर मैं प्रजापालक हूँ, ये मुझे शोभता नहीं है। लक्ष्मण ले आओ।

0: दिल्ली रेडियो स्टेशन में रेडियो नाटक का सही और पुख्ता स्वरूप नजर आया सन 1940-41 में जब उर्दू और हिंदी के जाने माने नाम सादत हसन मंटो कृष्ण चंदर और उपेंद्रनाथ अश्क यहां के स्टाफ में शामिल हुए उन दिनों कृष्ण चंदर और सादत हसन मंटो आकाशवाणी के ड्रामा एकांश में काम करते थे शुरू में नाटकों का लाइव प्रसारण होता था इफेक्ट्स के लिए नाटक स्टूडियो में पर्दे लटके होते थे बीचों बीच एक पंखा लगा होता था और भी कुछ उपकरण लगे होते थे क्योंकि नाटक लाइव प्रसारण होते थे इसलिए सभी तरह के इफेक्ट्स भी उसी समय तैयार करने होते थे चाहे वो घोड़े दौड़ने का हो हवा आने या तूफान आने का उन दिनों इफेक्ट्स के लिए कुछ रिकॉर्ड्स भी उपलब्ध थे लेकिन ज्यादातर इफेक्ट्स स्टूडियो में ही तैयार किए जाते थे
1: पहले जब रेडियो नाटक लाइव हुआ करते थे तब की कुछ बातें मुझे याद हैं मैं सुनाता हूं एक प्ले की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तीन कैरेक्टर थे उसमें दो कैरेक्टर की बातचीत चल रही थी आपस में बात करते करते किसी झोंक में एक कैरेक्टर ठीक है ऐसा नहीं हो सकता ये कहता हुआ एग्जिट मार गया पैनल पर जो प्रोड्यूसर बैठे थे उन्होंने कि लाइव प्ले चल रहा मैं क्या करूंगा अचानक ही उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि मैंने गलत एग्जिट मार दी है और जो व्यक्ति माइक्रोफोन पर खड़ा था वो भी सोचने लगा कि अब क्या किया जाएगा क्योंकि आगे तीन चार पेज लंबा सीन था अचानक जिन्होंने एग्जिट ली थी वो आए अरे रामलाल जी वो मेरी कैप यहां रह गई देखें कहां है हाँ हाँ ये रखी है इस कैप के बगैर मैं चल नहीं पाता हाँ तो मैं कह रहा था कि जिस विषय पर हम बात कर रहे थे उस विषय में ये जोड़कर उन्होंने आगे का सीन शुरू कर दिया तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें बताया भी जाता था हम देखते भी थे कि आकाशवाणी के स्टूडियोज के कॉरिडोर में ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले यानी 9:30 के बीच में कलाकार अपने हाथ में स्क्रिप्ट लेकर और पसीने आ रहे हैं और स्क्रिप्ट से मार्किंग करते करते करते करते चले जा रहे हैं और उसकी तैयारी में लगे रहते थे
0: रेडियो नाटक की जब हम बात करते हैं तो रेडियो नाटकों में भाषा का खास ख्याल रखना पड़ता है ताकि जो चीज श्रोता देख नहीं सकता कानों के माध्यम से एक चित्र की तरह वो उस चीज को देख सके शब्दों से ही चित्रों का निर्माण करना होता है रंग रूप की झांकी भी प्रस्तुत की जा सकती है रेडियो नाटकों की भाषा ऐसी होती है जिससे लगे कि शब्द बोल रहे हैं चित्रों का निर्माण कर रहे हैं
1: रेडियो नाटक बहुत ही दिलचस्प विधा है समझ में आ जाए तो बात क्या बात है बहुत मजा रहता है असल में इस वक्त तो रिकॉर्डिंग होती है लेकिन एक समय था कि जब रेडियो नाटक लाइव होते थे लाइव ब्रॉडकास्ट होता था 70s और 80s की बात है कि जब रात को 9:30 नाटक ब्रॉडकास्ट होते थे तो आम तौर पे घरों में हम लोग क्या करते थे कि घर की लाइट ऑफ कर दी और नाटक सुनने लगे तो नाटक सुनते हुए ऐसा लगता था जैसे आपके सामने शब्द चित्र बन गया यही रेडियो नाटक है कि जब आप बोलें तो सुनने वालों को शब्द चित्र बन जाए चलचित्र की भांति उनके सामने सब उनको दिखाई देने लगे
0: जब रेडियो नाटक लिखे जाते हैं तो संवादों को कैसे लिखना है इस बात का खास ख्याल रखना होता है नाटक के पात्र शब्दों के माध्यम से जो बातचीत करते हैं उसे संवाद कहा जाता है आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो के लिखे नाटक तीन खामोश औरतें का एक अंश
2: क्यों बहन सुनी थी आपने इस खामोश औरत की बातें माफ करना बहन मैंने वाकफियत के बगैर ही आपसे गुफ्तगू शुरू कर दी दरअसल उस औरत की बातों ने मुझे बेहद परेशान कर दिया था
3: नहीं भिन्नो इसमें माफी की क्या बात है
2: मैं पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ तशरीफ ले जाएंगी
3: खंडवा
2: खंडवा तो आप खंडवा जाएंगी ये खंडवा कहाँ हुआ
3: झांसी के पास
2: झांसी के पास अच्छा आपके साथ कौन है
3: मेरा भाई
2: ओह तो वो स्टेशन पर आपके भाई थे बड़े कि छोटे
3: बड़े भाई
2: कै बरस बड़े होंगे आपसे
3: दो बरस
2: और आपका नाम
3: महमूदा
2: मेरा नाम शमशाद है
3: जी अच्छा
2: आपके भाई साहब का नाम
3: खान महमूद उमर खान
2: खान महमूद उमर खान
3: जी
2: मेरे भी दो भाई हैं
3: अच्छा
2: एक मुझसे बड़ा

0: एक चोट। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन रंगमंच के लिए लिखा गया था, लेकिन रेडियो के लिए भी मोहन राकेश ने ही उसका रूपांतरण किया।
1: माँ माँ, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, माँ ऐसी वर्षा, दूर दूर तक की घाटियां भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। गई थी दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगो कर आ गई हूँ।
0: इस पूरे संवाद में एक तस्वीर सी उभर कर सामने आई है श्रोताओं के सामने। संवाद जब लिखे जाते हैं तो पात्रों के मुताबिक ही लिखे जाते हैं। आकाशवाणी के रेडियो नाटकों से जुड़ी हुई जानी मानी कलाकार माला कुमार अपनी यादों को साझा करते हुए,
2: रेडियो नाटक एक इतना सुंदर गहरा माध्यम है जहां आप अपने तन मन धन से और अपने पूरे आपकी जो अंतरात्मा है उसमें आप लीन होकर अपने संवाद बोलते हैं एक माइक के थ्रू और अपने सह कलाकारों के साथ, जिसमें एक स्टूडियो है और उसके जरिए आप तक सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है, एक पूरा नाटक तैयार होता है और एक ये बहुत ही अद्भुत बहुत ही खूबसूरत मीडियम है। और मैं इससे जुड़ने का मुझे जो एहसास है जो एक्सपीरियंस है वो सर आंखों पर, और इससे सुंदर मीडियम मुझे कहीं नहीं लगता। सबसे ज्यादा जो मुझे सेटिस्फैक्शन होता है, इनर सेटिस्फैक्शन, वो एक रेडियो नाटक के माध्यम से ही होता है। और बहुत से नाटकों में किया है, इसमें तरह तरह के भावनाएं तरह तरह के इमोशंस को अपनी आवाज के जरिए अपनी सांसों के जरिए जो करने को मिलता है वो मुझे लगता है कि कैमरा में भी बहुत कुछ होता है इस तरह से, लेकिन उसमें आपके चेहरे से आपको वो समझते हैं दर्शक कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। पर रेडियो नाटकों में आपका कोई चेहरा नहीं देखता है, आप कितने भी उम्र के हो एक जवान रोल आप कर लेते हैं। आप 50 साल की हैं, आप 20 साल की नायिका का रोल कर सकती हैं, आप 20 साल की हैं 60 साल की नायिका का रोल कर सकती हैं, एक वृद्धा का रोल कर सकते हैं, ये सब आपकी आवाज का खेल है।
0: रेडियो नाटक में कई बार नरेशन का इस्तेमाल भी किया जाता है। नरेशन का तात्पर्य उस अंश से है जिसमें पात्र वही कार्य संपन्न करता है जो कहानीकार करता है। ये पात्रों का आपस में संवाद नहीं होता बल्कि एक पात्र का ही वक्तव्य होता है। इसके जरिए देश काल का परिचय दिया जाता है, जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं, विवरण दिए जाते हैं, घटनाओं की श्रृंखला को जोड़ा जाता है। नरेटर यानी सूत्रधार, जो बातें संवादों में नहीं आती और जिनका नाटक में आना जरूरी है, उन्हें नरेशन में रखा जाता है और सूत्रधार के जरिए वो बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर सूफी कवित्री लल्लेश्री पर लिखे गए नाटक प्रेम का सुर आस्था का संगीत, इस नाटक में जेहलम और चिनार को नरेटर बनाया गया। जेहलम और चिनार सूफी कवित्री लल्लेश्वरी की कहानी के लिए पृष्ठभूमि बनाते हैं, कहानी शुरू करते हैं, फिर बीच बीच में आकर कहानी की कड़ियां जोड़ते हैं और घटनाओं पर टिप्पणी करते हैं। ललदत्त यानी लल्लेश्वरी हमारी सूफियाना विरासत और भक्ति परंपरा की महान कवित्री, हमारे देश में अनेकता में एकता की कड़ी है लल्लेश्वरी। लल ने अपना फलसफा कश्मीरी भाषा में लोगों तक पहुंचाया। उनके वाक्यों में सूफी, सनातन पंथ, इस्लामी सिद्धांत और शिवनाथ सभी मौजूद थे। लल के लिए प्यार ही खुदा था और आपसी भाईचारा बंदगी। लल ने बंधु से बंदगी, आपसी भेदभाव मिटाकर धर्मों की समानता पर बल दिया।
3: मैं समय की धारा के साथ आज आ पहुंचा हूँ धरती के इस स्वर्ग कश्मीर की वादी में। आज इसी वादी में घूमते घूमते मैंने सदियों से बह रही झेलम को देखा तो मन में आया कि जैसे दादी नानी की कहानियां पुरखों से चली आ रही हैं, उसी तरह इस प्राचीन नदी ने भी तो अनेक राजाओं का शासन देखा होगा, अनेक साम्राज्यों का पतन देखा होगा। कितनी महान हस्तियों को कभी शिकारे से इस पार कभी उस पार पहुंचा।

0: इसमें चल रहे चप्पूओं की मधुर आवाज ने कितने संगीतज्ञों को उद्वेलित किया होगा, प्रेरणा दी होगी। सदियों से इसके किनारे खड़े वादी की धरोहर, हर मौसम में रंग बदलते चिनार, खुद झेलम के हर रंग से परिचित हैं। साक्षी हैं ये दोनों हमारी वादी की सभ्यता के, इसकी संस्कृति के। इन दोनों का एक अटूट रिश्ता है।
1: अगर रंगमंच या फिल्मों के हम बात करें तो यहाँ पर मूक अभिनय भी हो सकता है, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। संवाद ही रेडियो नाटक है। संवाद रहित रेडियो नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस लिहाज से रेडियो नाटक की कला संवाद लेखन की कला है। रेडियो नाटकों से जुड़े अपनी यादों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी के जाने माने नाट्य कलाकार नीरज शर्मा।
2: मुझे एक प्ले की बात याद है, पंडित दीनानाथ जोशी, बहुत सीनियर कलाकार थे, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, और वो अपनी स्क्रिप्ट पे ऐसे मार्किंग करते थे कि दूर से भी उनकी स्क्रिप्ट नजर आ जाती थी कि इसमें क्या लिखा है, पेन से गड़ा कर देते थे। अच्छा, खास बात थी वो उर्दू में लिखा करते थे और उर्दू में पढ़ते थे। तो एक प्ले की रिहर्सल चल रही थी, जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास था धरती धन्ना अपना, मैं था उसमें, सुचित्रा जी थी, वीना जी थी। तो एक कुछ रोमांटिक सीन था, तो मैं और वीना जी हम लोग उस रोमांटिक सीन के रिहर्सल कर रहे थे, तो जरा आवाजें हल्की हल्की हमारे मुंह से निकल रही थी। मैं भी उन दिनों बहुत नया था तो बहुत जोर से नहीं बोल रहा था, और वीना जी भी मेरे साथ साथ हल्के हल्के बोल रही थी। पंडित दीनानाथ जोशी दूर बैठे थे, बोले, अरे भाई जोर से तो बोलो, हमें भी तो सुनाई दे, स्क्रिप्ट में कहाँ है। तो डायरेक्टर महोदय बोले, पंडित जी ये सीन आपके सुनने के लिए नहीं है। ये बोला सब मिठा का गूंज गया। एक दफा की बात है कि एक प्ले रिकॉर्ड हो रहा था कल नहीं लौटेगा, दीनानाथ जी उसका निर्देशन कर रहे थे, और वो एक भाई बहन की कहानी थी। भाई ने तीज पर बहन को धानी चुनरिया ला के दी और झूला झूलते हुए बहन धानी चुनरिया के गीत गाती है, भाई उसका रिकॉर्ड कर लेता है। होता यह है कि शादी के बाद वो उसको लड़की को मार देते हैं। तो सीन ये था कि भाई उसकी रिकॉर्डिंग सुन सुनकर रो रहा है और माँ आकर उसे चुप कराती है। तो दीनानाथ जी बोले, भाई नीरज, ये सीन हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे जब सिर्फ तुम दोनों हो गए, यानी माँ और बेटा। तो एक खास दिन हमको बुलाया गया, वो रिकॉर्डिंग रख दी गई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको प्ले किया गया, रिकॉर्डिंग शुरू हुई। गोपाल सक्सेना जो थे वो असिस्ट कर रहे थे दीनानाथ जी को, रिकॉर्डिंग शुरू हुई, इशारा मिला और हमने उसको सुनना शुरू किया और धीरे धीरे उस पर रिएक्ट करना शुरू किया। रिएक्शन करते करते, रिएक्शन देते देते सच में रोना आ गया और वाकई में रो पड़ा उसके अंदर। माला जी आई जो माँ का रोल कर रही थी, माला गुप्ता, उन्होंने मुझे चिपका लिया सीने से अपने और कहा, नहीं बेटा ये वो तेरी सब कुछ नहीं थी, वो मेरी भी बेटी थी, ये डायलॉग था, ये कहकर मुझे चुप कराया। सीन वाइंड अप करके जैसे हमने ग्लास के उधर कंट्रोल रूम में देखा तो दीनानाथ जी सर पे हाथ धर के बैठे हुए थे और गोपाल जी अवाक, आंखें बाहर मुंह खुला ऐसे बैठे थे। अब समझ में नहीं आया कि रिकॉर्डिंग हो गई नहीं हो गई। तो मैं कंट्रोल रूम में गया और जाके मैंने पूछा, जी रिकॉर्डिंग हो गई? कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा, जी रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक हो गया? तो दीनानाथ जी बहुत ही दुखी मन से मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा दोबारा करना पड़ेगा। मैंने कहा, जी क्यों, क्या हुआ? कल टेप खत्म हो गया। गोपाल जी की तरफ इशारा करके बोले, मैंने इसे कहा था कि बड़ा टेप ले, टेप खत्म हो गया, अब दोबारा करना पड़ेगा। अब ये मानिए कि घड़ों पानी पड़ गया ऊपर से नीचे तक, कि इतना इमोशनल सीन एक बार जो हो गया वो दोबारा होना बहुत मुश्किल था। फिर भी हमने कोशिश की, सीन को किया। सीन करने के बाद जब सुनने लगे जाके तो गोपाल जी एकदम से अपनी कुर्सी से उछल पड़े, कहते मैं जोड़ दूंगा, लास्ट की जो सिसकियां थी मैं उनको जोड़ दूंगा। और गोपाल जी ने वाकई उस सीन को जोड़ दिया। किसी को पता नहीं चला कि ये सीन दो पार्ट्स में रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन वो किस्सा आज भी जब मुझे याद आता है तो मैं सोचता हूं कि क्या जमाना था। अगर वो नहीं जुड़ पाता तो शायद वो सीन नहीं हो पाता उस तरीके से।
1: रेडियो नाटक और उसके लेखन का सारा दायित्व उसके डायलॉग्स पर ही है, उसके संवादों पर ही होता है। संवादों के माध्यम से कहानी कही जाती है, पात्रों का परिचय दिया जाता है, जरूरत के मुताबिक उनकी रूपरेखा, वेशभूषा, उनका काम जैसी बातों से श्रोताओं को परिचित करवाया जाता है। आसपास के वातावरण का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, पात्रों के भाव और विचारों को बताया जाता है और उनके आपसी संबंधों पर रोशनी डाली जाती है।
3: रेडियो नाटक सब विधाओं से बिल्कुल अलग है, इसलिए क्योंकि सिर्फ आवास पे बेस्ड है और ये किसी भी एक्टर की ट्रेनिंग के लिए भी मुझे लगता है कि काफी फायदेमंद है क्योंकि जब आप सिर्फ अपनी आवाज से खेलकर अपने सारे एक्सप्रेशंस को कन्वे करते हैं तो आपको उसकी वैल्यू भी पता चलती है और आपको ये भी पता चलता है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है और ये आपका बाकी विधाओं में भी काम आता है चाहे आप फिर आप स्टेज पे जाएं चाहे आप कैमरा के आगे जाएं और मतलब जैसे खुद का अगर मैं जिक्र करूं तो मुझे आज तक किसी ऑडियो के आदमी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप अपनी आवाज को थोड़ा सा उठाइए मैं कैमरा की बात कर रहा हूं तो ये इसलिए क्योंकि मैं आप आवाज के जरिए अगर आप कन्वे कर पाते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होती है
1: रेडियो नाटकों के अलग अलग रूप हैं पारिवारिक सामाजिक ऐतिहासिक पौराणिक चारित्रिक मनोवैज्ञानिक वगैरह मोनोलॉग है स्वगत नाटक मोनोलॉग का अर्थ है वो नाटक जिसमें एक ही पात्र बोलता है इसे स्वगत नाटक और एक पात्रीय नाटक भी कहते हैं इसमें केवल एक पात्र रहता है आइए सुनते हैं एक पात्रीय नाटक पन्ना धाय का एक अंश
4: सांझ पड़ी लकड़ी
5: पन्ना देख कहा है हाँ
4: तुम यहाँ क्या करने आए हो
5: क्या करने आया हूँ मैं उस बीच को नष्ट कर दूंगा उससे पहले पेड़ बन के वो मेरे रास्ते का रोड़ा बने मैं उसे समाप्त कर दूंगा
4: तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम उसकी हत्या नहीं कर सकते तुम तो उसके संरक्षक हो नहीं मैं उसकी शैया के पास से नहीं हटूंगी
1: रेडियो से प्रसारित होने वाले नाटकों में पद्य नाटक का भी बहुत अहम रोल होता है इसे काव्य नाटक या गीति नाटक भी कहते हैं पद्य नाटक की विशेषता को समझने के लिए गद्य नाटकों और पद्य नाटकों के अंतर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है गद्य नाटकों की अगर हम बात करें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने का माध्यम है हमारे चिंतन और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है आइए सुनते हैं पद्य नाटक ब्लैक होल का एक अंश
6: मैं काल हूँ पता नहीं कब जन्मा मैं ये भी नहीं जानता कि रहूंगा कब तक मेरे भीतर छुपे हैं अनंत ब्रह्मांड और उनके असंख्य रहस्य
7: नहीं पहचाना अरे इतने संकेतों के बाद भी आप जान न सके कि मेरा नाम कल्पना है और मैं आपके विचारों को पंख देने आपके पास उड़कर आ गई हूँ इसी अनंत शून्य के अंधकार से कल्पना तो ईश्वर भी करता होगा और हमारे आपके जैसे साधारण जन भी मगर ईश्वर की कल्पना थोड़ी विचित्र होगी है ना कुछ से कहीं अधिक असाधारण कहीं ईश्वर ही तो कल्पना नहीं अर्थात कल्पना का ईश्वर मेरा ईश्वर
1: जाने माने कलाकार और रेडियो नाटकों से जुड़े हुए श्री योगेंद्र टिक्को अपनी यादों को बांटते हुए
8: मैं काफी सालों से आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ हूं और कुछ ऐसा भी है कि मैंने बाकी सारे माध्यम में भी बहुत काम किया है अलग अलग विभिन्न माध्यमों में टीवी हो फिल्म्स हो या थिएटर हो सबसे जुड़ा हूं मैं मगर जितना सुकून और सुख मुझे आकाशवाणी पे ड्रामा करके मिलता है वो मुझे और कहीं शायद उतना नहीं मिलता क्योंकि ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और आसान नहीं है ये एक तरह से आपकी कलाकारी को मांझता है आपको परिपक्व करता है ताकि आप जब आपकी वॉइस एकदम स्ट्रांग होती है आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होती है तो आप किसी भी माध्यम में जाके चाहे वो फिल्म्स हो टीवी हो थिएटर हो कहीं पे भी जाके आप अपनी कला को और निखार सकते हैं तो मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली कहूंगा कि मुझे अच्छे प्लेस करने का मौका मिला है
1: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए केदारनाथ
9: वैसे तो बहुत सी विधाएं हैं जहां से हम तकरीबन आर्टिस्ट गुजरे हैं लेकिन इससे गुजरने पर एक ये एहसास हुआ कि सिर्फ आवाज के माध्यम से और एक ध्वनि का जो एक अलग अपना एक इफेक्ट होता है उसके थ्रू

0: एक कंप्लीट एक दृश्य को पूरे जहन के अंदर उतार के रख देना, मतलब ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम लोग थिएटर में बैठ कर के थिएटर देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल उस तरह का एक मंचन और उस तरह का दृश्य प्रारूप जो है वो मन में और दिमाग में उतरता चला जाता है। हालांकि ये विधा मुझे बाकी विधाओं से थोड़ी सी कठिन सी प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें जो एक सुकून और एकाग्रता एक का जो संगम नजर आता है वो अलग तरह का है।
1: कई नाटक संगीत में नाटक होते हैं जिनमें कहानी के साथ साथ नाटक के साथ साथ संगीत और गीतों का भी मिश्रण होता है, जो सुनने में श्रोताओं का मन और ज्यादा लुभाते हैं। आइए अब सुनते हैं संगीत में नाटक मिर्जा साहिबा का एक अंश।
2: साहिबा से मुझे मिलवा।
3: तो ये बात है, जानती थी, तब से जानती हूँ, जब तू मस्जिद से घर लौटता हुआ मासी के घर साहिबा को मिलता था। मैंने तो अल्लाह से कई बार दुआ मांगी कि तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। शायद अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। चल चल मेरे साथ चल
2: चल मासी चल, चल।

ये था यादों का कभी खत्म ना होने वाला सिलसिला। आज रेडियो नाटक कितनी सीढ़ियां पार करके यहां तक पहुंचा है और श्रोताओं के दिलों में अपनी जगह बरकरार रखे हुए है।

आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में अभी आप सुन रहे थे रूपक आवाजों का सुनहरा सफर रेडियो नाटक शोध आलेख स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी

100.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल गीत मेरे मन मीत लेकर स्टूडियो से एक बार फिर साथ हूं मैं आपकी दोस्त रोहिणी. वो कहते हैं ना यूं सजा चांद की झलका तेरे अंदाज का रंग यूं फजा महकी कि बदला मेरे हमराज का रंग. गीत मेरे मन मीत का आगाज इस प्यारे से अंदाज के साथ जो कि है दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से ये गीत है. इस गीत को अल्फाज दिए शैलेंद्र साहब ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने. जी हाँ, इस गीत को आवाज दी लता जी ने.

14.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरी मनमीत का ये प्यारा अंदाज आप तक पहुंच रहा है श्रोताओं. कहते हैं कि छुपाता है बहुत मुझको मेरा साया, मगर फिर भी मैं खुद को रोशनी से दूर जाकर देख लेता हूं. 14.1 मेगाहर्ट्ज पर ये गहरा एहसास आप तक पहुंच रहा है गीत मेरी मनमीत के साथ. आइए अगला गीत सुनते हैं. चलती का नाम गाड़ी फिल्म से किशोर जी की आवाज में इस गीत को अल्फाज दिए मशरू सुल्तानपुरी साहब ने और श्रोताओं संगीत पद किया एस डी बहमन जी ने. तो आइए सुनें ये प्यारा अंदाज.

100.1 MHz पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। कहते हैं कि मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता, ये वो एहसास है जो दिलों को धड़काता है। ये अगला गीत, आइए आपकी नजर करते हैं तेरे घर के सामने फिल्म से, रफी साहब की बेहद प्यारी सुरीली आवाज। और इस गीत को अल्फाज दिए हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया एसडी बर्मन जी ने। तो आइए 100.1 MHz पर सुनते हैं ये प्यारा गीत का अंदाज।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। बड़े ही खूबसूरत ख्याल है कि कई बार नापसंद जिंदगी में कुछ मनपसंद लोग, या ये कहूं कि कुछ मनपसंद जिंदगी का हिस्सा होते हैं जो आपको उम्र भर याद रह जाते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। तुमसे मिलने की तमन्ना बहुत है, लेकिन सुना है हर तमन्ना पूरी नहीं होती। तो श्रोताओं, फिलहाल अगर आपकी ये तमन्ना है कि गीत मेरे मन में तो यूं ही अपना सफर तय करता रहे, तो जी हाँ, सफर जरूर तय करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए, आज के गीत मेरे मन मीत को यहीं समेटती हूँ। दीजिए इजाजत मुझे यानी रोहिणी को, और फिलहाल सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, ये अगला गीत जो कि आप सुनेंगे

चोरी चोरी फिल्म से और इस गीत को आवाज दी है लता जी और मनाडे साहब ने। साथ ही इस गीत को आपको बता दें कि लिखा है शैलेंद्र जी ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए सुनते हैं और फिलहाल मुझे रोहिणी को दीजिए इजाजत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के

0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आदिलकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापड्डी के पलानास्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मुन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी है कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच के आदेश दिए। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार से सिफारिशें करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को कोलकाता के लिए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन में आज भारतीय टीम ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में लेबनान पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने 2005 के बाद इस प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरनजीत के सामने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की कांग चेंग की चुनौती होगी, वहीं साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस गिगार्ड का सामना करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। सीनियर बीजेपी लीडर शिवेंदु अधिकारी विल बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata yesterday, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing the meeting, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
3: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
4: द इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम। सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड। देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर शिवेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव।

तराना फिल्म से आपने ये गीत सुना शैलेंद्र सिंह की आवाज में। इसे लिखा तिलकराज थापर ने और संगीत दिया राम लक्ष्मण ने। एक बार फिर शनिवार की रात है, आपका हमारा और प्यारे प्यारे गीतों का साथ है। रात की खामोशी में सुरों की महफिल सज चुकी है और हर धुन जैसे दिल के किसी कोने को धीरे से छू रही है।

उड़ते खिलौने फिल्म से आपने ये गाना सुना येसुदास की आवाज में। इसे लिखा कैफी आजमी ने और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। माना हो तुम बेहद हंसी हो, लेकिन ये भी सच है कुछ लोग अपनी सादगी से ही दिलों पर राज कर जाते हैं। चेहरे की चमक पल भर को भा सकती है, मगर दिल की खूबसूरती उम्र भर याद रहती है।

दादा फिल्म का गाना आपने सुना येसुदास की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराकर चल दिए। कितनी आसानी से लोग अपने हिस्से की मोहब्बत निभाकर किसी और की दुनिया वीरान कर जाते हैं। कुछ दर्द आवाज नहीं करते, बस रातों की खामोशी में धीरे धीरे दिल को सुनाई देते रहते हैं।

त्रिशूल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार लता मंगेशकर और येसुदास की आवाज में साहिर ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया खयाम ने दर्द हो जुदाई हो तन्हाई हो फिर भी मोहब्बत बड़े काम की चीज है ये वो एहसास है जो टूटे हुए इंसान को भी जीने की वजह दे देता है मोहब्बत हर बार मुकम्मल हो जरूरी तो नहीं कभी किसी की यादों के सहारे पूरी उम्र ही कट जाती है कभी ये आंखों में चमक बनती है कभी धीमी सी कसक मगर दिल से पूछिए तो हर धड़कन यही कहती है मोहब्बत के बिना जिंदगी में वो बात कहां

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

कभी कभी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती क्योंकि कुछ चेहरे सिर्फ खूबसूरत नहीं होते उनमें एक अपनापन और सुकून होता है उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है जैसे बाकी सब कुछ कुछ देर के लिए रुक सा गया हो

धर्मात्मा फिल्म का गाना आपने सुना कंचन और मुकेश की आवाज में। इंदिवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, एक एहसास है, क्योंकि प्यार होने पर इंसान बदलने लगता है। किसी की छोटी छोटी बातें अच्छी लगने लगती हैं, उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, यहाँ तक कि उसकी खामोशी भी, और कभी कभी उसके सितम भी।

सनम तेरी कसम फिल्म से आपने गाना सुना आशा भोसले की आवाज में। इसे लिखा गुलशन बावरा ने और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कुछ मोहब्बतें ऐसी ही होती हैं, उनमें शिकायतें भी होती हैं, दर्द भी, इंतजार भी, फिर भी दिल उसी इंसान से जुड़ा रहता है। प्यार अगर सच्चा हो तो वो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ नहीं रहता, बल्कि तकलीफों के बीच भी दिल से कभी कम नहीं होता। कभी कभी इंसान टूटता बहुत है, लेकिन मोहब्बत फिर भी दिल के किसी कोने में वैसी ही रहती है, धीमी, खामोश, मगर बेहद गहरी।

एक दूजे के लिए फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 52 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।

का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मुन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनल ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की। इस बीच डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आदिरकर से राज्य में नई सरकार के गठन के लिए संवैधानिक प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का आग्रह किया है। श्री स्टालिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और निर्वाचित विधायकों की सूची जारी कर दी गई है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने गुयाना के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की और भारत गुयाना के स्वास्थ्य संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। कैरेबियन देशों की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर ने गुयाना के जॉर्ज टाउन में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. फ्रैंक एंथोनी से मुलाकात की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के नेताओं ने तीन दिन के युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि युद्ध विराम आज से सोमवार तक रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन ने कोलकाता के लिए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के सूजो में आज भारतीय टीम ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में लेबनान पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ

धर्मपुत्र फिल्म का गाना आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एन दत्ता ने। दूर से कोई सुहाना गीत कानों में उतरने लगे तो दिल अपने आप यादों की गलियों में भटकने लगता है। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, जैसे रात की खामोशी में कोई दिल की बात धीरे से कह रहा हो।

शोला और शबनम फिल्म से आपने गीत सुना रफी की आवाज में कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाब ने कुछ पंक्तियां सिर्फ गीत नहीं होती दिल की अनकही तलाश बन जाती हैं इस एक एहसास में इंतजार भी है अपनापन भी और वो हल्की सी उदासी भी जो रात के सन्नाटे में और गहरी लगने लगती है कभी कभी सामने वाला हमारे भीतर वही ढूंढता रहता है जिसे हम खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाते

उस्तादों के उस्ताद फिल्म से ये गीत आपने सुना रफी की आवाज में। सौ बार जन्म लेंगे सौ बार फना होंगे, ये सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं, एक ऐसी चाहत का एहसास है जो वक्त और फासलों से भी बड़ी लगती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर दौर में हर हाल में दिल के करीब ही रहते हैं। पुराने गीतों की यही खूबी है, कम शब्दों में गहरे जज्बात उतार देते हैं और सुनने वाला चुपचाप उन एहसासों में खो जाता है।

नागिन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जी हाँ, इस पुकार में इंतजार की बेचैनी भी है और मिलन की मीठी उम्मीद भी। रात जितनी गहरी होती जाती है, दिल की आवाज उतनी ही साफ सुनाई देने लगती है। पुराने सुरों की यही बात दिल को छू जाती है। वो सीधे एहसासों से बात करते हैं बिना किसी दिखावे के।

वक्त हुआ है 1:31 और ठीक 24 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

पतंगा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी भूल जाने की बातें भी यादों को और गहरा कर देती हैं। इस एहसास में शिकायत कम, सच्ची मोहब्बत ज्यादा महसूस होती है। कुछ रिश्ते साथ रहें या ना रहें, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा अपनी जगह बनाए रखते हैं।

आखिरी दाव फिल्म का गीत आपने सुना रफी की आवाज में. मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने. ये वो एहसास है जब शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती. सामने किसी की आंखें हों, चेहरे की खामोशी हो और दिल पहले ही सब समझ चुका हो. पुराने गीत बड़ी सादगी से वो बातें कह जाते हैं जिन्हें अक्सर लोग उम्र भर कह नहीं पाते.

परदेसी फिल्म का गाना आपने सुना मीना कपूर की आवाज में, प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने। इन शब्दों में एक मीठी सी तड़प भी है और अपनापन भी, जैसे कोई एहसास धीरे धीरे दिल में उतरकर वहीं बस गया हो। कुछ धुने सुनते ही मन हल्का सा झूम उठता है और रात का सन्नाटा भी सरों से भर जाता है।

यास्मीन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने आंखों में समा जाओ इस दिल में रहा करना ये सिर्फ किसी को पास बुलाने की बात नहीं बल्कि उसे अपनी दुनिया बना लेने का एहसास है कुछ लोग इतने करीब महसूस होते हैं कि उनकी मौजूदगी आंखों की चमक और दिल की धड़कन दोनों में बस जाती है ऐसे पुराने गीत मोहब्बत को बड़े नर्म और खूबसूरत अंदाज में छू जाते हैं

0: आकाशदीप फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने कभी कोई अनजाने में दिल में ऐसी जगह बना जाता है कि उसके जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी महसूस होती रहती है पुराने गीतों की यही जादूगरी है वो अधूरी बातों और अनकहे जज्बातों को भी सुरों में ढाल देते हैं
1: प्यार पर

सोने की चिड़िया फिल्म से आपने गीत सुना तलत महमूद और आशा भोसले की आवाज़ में साहिर ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने

वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 15 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री होंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास

0: कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच की शिकायत की है। इस बीच मुन्नारकुड़ी से अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के विधायक एस कामराज के लापता होने और उनके वापस चेन्नई लौटने की खबरों से सियासी सरगर्मी तेज है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने वाला पत्र फर्जी था। उन्होंने यह भी कहा कि एकमात्र विधायक कामराज ने पहले जिस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वे एड्डापाडी पलानीसामी को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में था। उन्होंने कहा कि कामराज जाली पत्र को आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंप देंगे। उधर केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के नेताओं ने 3 दिन के युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि युद्धविराम आज से सोमवार तक जारी रहेगा। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत फिर से शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करेंगे। चर्चा में सीमाओं का निर्धारण, मानवीय राहत और पुनर्निर्माण के लिए ठोस मार्ग तथा लेबनान की संप्रभुता जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Senior BJP leader Suvendu Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata yesterday, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Suvendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
2: विधान मंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: Mr. Shah expressed gratitude to people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations the people of Bengal have placed on them and the mandate they have given with hope and trust, they will make every effort to ensure that their faith is not broken in any way. Addressing the meeting, the Chief Minister designate Suvendu Adhikari said, whatever guarantees have been announced by PM Modi, the BJP government and the state will fulfill all responsibilities. Today morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming that the swearing-in ceremony which was to take place today will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician is all set to form the government.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 56 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ

कश्मीर की कली फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। क्या खूबसूरत एहसास था इन पंक्तियों में। मोहब्बत इंसान को बदल देती है, फिर छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं, और किसी एक शख्स की मुस्कान पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती हो जाती है। जिसे सच्चा प्यार मिल जाए उसे जैसे हर तरफ रोशनी दिखाई देती है, दिल में उम्मीद रहती है, बातों में नरमी आ जाती है और जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं महसूस होने लगती है।

गाइड फिल्म का ये गाना आपने सुना रफी की आवाज में. शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने. दो लोग जब सच में एक दूसरे के हो जाते हैं तो फिर सपने अलग नहीं रहते. खुशियां, उम्मीदें, मंजिलें सब साझा हो जाती हैं. जिंदगी की राहें आसान हो या मुश्किल, अगर कोई अपना साथ चल रहा हो तो सफर डरावना नहीं लगता.

सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में. इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने. कभी कभी किसी की याद, किसी का असर इतना गहरा हो जाता है कि इंसान अपने ही एहसासों में खोने लगता है. दुनिया उसे दीवानापन कहती है, लेकिन दिल जानता है कि ये किसी के लिए टूटकर महसूस करने की हालत है. जब हर बात में वही चेहरा दिखाई दे, हर धड़कन उसी का नाम लेने लगे, तो फिर इंसान कहाँ अपने बस में रह जाता है.

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 47 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

आदमी फिल्म का गाना सुना आपने रफी और तलत महमूद की आवाज में शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया नौशाद ने क्या दिलकश एहसास था इन पंक्तियों में रात की ठंडी खामोशी मौसम की नरमी और साथ में किसी अपने की मौजूदगी बस वही पल जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं

दिलीप मंदिर फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। रात की चांदनी, पास बैठा कोई अपना और दिल में बस यही दुआ कि ये साथ, ये बातें, ये एहसास कभी खत्म ना हो। शायद मोहब्बत का सबसे सुंदर रूप वही होता है जब इंसान वक्त से भी थोड़ी मोहलत मांगने लगे।

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म से आपने गाना सुना आशा और रफी की आवाज में। एस एच बिहारी ने ये गीत लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। इन शब्दों में बिछड़ने का दर्द भी है और दोबारा मिलने की उम्मीद भी। कभी कभी मुलाकात खत्म होने लगती है लेकिन दिल उसे खत्म मानने को तैयार नहीं होता। तब इंसान किसी वादे का सहारा ढूंढता है, एक छोटी सी उम्मीद कि ये साथ पूरी तरह खोया नहीं है।

फूल बने अंगारे फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। कभी कभी दिल भी कितना बेचैन हो उठता है, न मंजिल की खबर न रास्तों का होश, बस किसी एहसास के पीछे भागता चला जाता है। ऐसे में खुद को समझाना पड़ता है कि हर धड़कन का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ रिश्ते कुछ ख्वाब वक्त के साथ ही अपना मतलब बताते हैं।

मोहब्बत इसको कहते हैं। इस फिल्म से आपने गाना सुना रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। कभी किसी का यूं सामने होना सिर्फ मुलाकात नहीं होता, वो एक पूरा एहसास बन जाता है। नजरें ठहर जाती हैं, वक्त धीमा पड़ जाता है और दिल चाहता है कि वो पल थोड़ा और ठहर जाए। शायद इसीलिए दिल कह उठता है, अभी मत जाइए, पहले इस धड़कन को यकीन तो हो लेने दीजिए कि ये सपना नहीं हकीकत है।

सपना और प्रीत पर आई फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। वक्त हुआ है 2:57 और ठीक 33 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही मीना गंधर्व के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानास्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानी स्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है।

0: को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थ के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की महानिदेशक एमी पोप से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक में नियमित प्रवासन मार्गों के विस्तार और विविधीकरण तथा भारत में प्रवासन संबंधी वैश्विक समझौतों के कार्यान्वयन की प्रति भारत की सक्रिय दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को कोलकाता के लिए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Senior BJP leader Suvendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata yesterday, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Suvendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
2: विधान मंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: Mr. Shah expressed gratitude to people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations the people of Bengal have placed on them and the mandate they have given with hope and trust, they will make every effort to ensure that their faith is not broken in any way. Addressing the meeting, the Chief Minister Designate Suvendu Adhikari said, whatever guarantees have been announced by PM Modi, the BJP government in the state will fulfill all responsibilities. Today morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming that the swearing-in ceremony which was to take place today will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician is all set to form the government as he again met the governor yesterday and staked claim to form the government saying that he has majority numbers. The Indian Union Muslim League, headed by Professor Khadir Mohideen, has said that his party has not given a letter of support to Tamiraga Vetrigakaragam. Meanwhile, the missing MLA, S. Kamaraj of the AMMK from Manarkudi, has returned to Chennai, as said by Mr. T.T.V. Dhinakaran, had returned to formally launch a complaint. Interacting with the media, he

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम कोर चैनल जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 3:11 और 5 सेकंड। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, रात की तन्हाई में अक्सर वो लोग सबसे ज्यादा याद आते हैं जो कभी हमारी धड़कनों के बहुत करीब हुआ करते थे। परदेश जाने वाले तो चले जाते हैं, मगर पीछे छोड़ जाते हैं इंतजार, यादें और ढेर सारी दुआएं। चलिए इसी एहसास को सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत में।

रात की खामोश खामोशी में अक्सर कुछ आवाजें दिल के बहुत करीब आ जाती हैं। किसी की याद, किसी का ख्याल और वो मीठा सा इंतजार जो आंखों को सोने नहीं देता। मोहब्बत अगर दिल से हो तो दूरियां भी उसे कम नहीं कर पाती। फिर हर पल बस एक ही दुआ निकलती है कि वो जिसे हम चाहते हैं हमेशा सलामत रहे।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 3:39 और 41 सेकंड। हमराही कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। साथियों, जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए याद बन जाते हैं। एक मुलाकात, एक मुस्कुराहट और फिर पूरा दिल उसी के नाम हो जाता है। ना कोई शोर होता है, ना कोई ऐलान, बस चुपके से मोहब्बत हो जाती है और तब दिल यही गुनगुना उठता है।

दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा कभी नहीं रहता। कभी खुशियां आती हैं तो कभी गम भी दस्तक देते हैं, लेकिन जो रिश्ते प्यार से जुड़े होते हैं ना, वो हर हाल में साथ निभा जाते हैं। इसलिए जिंदगी की शिकायतों को छोड़िए और मोहब्बत में जीवन बिताइए, क्योंकि यही पल बाद में सबसे खूबसूरत याद बन जाते हैं।

में उतर जाते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, ये गीत तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा गीत है जो हमें अपने वतन, अपने लोगों और उन रिश्तों की याद दिलाता है जिनसे दूर होकर भी दिल कभी दूर नहीं होता। एक चिट्ठी में सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें माँ की ममता, अपनों का प्यार और घर की मिट्टी की खुशबू छुपी होती है। और जब बरसों बाद कोई पैगाम अपने देश से आता है ना, तो आंखें भीग जाना बिल्कुल स्वाभाविक होता है।

श्रोताओं इस गीत के साथ ही मीना चौहान को हमराही कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार। 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले कल कोलकाता में उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने ये खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उधर केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम कोर चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 4:11:05 अरुणिमा कार्यक्रम में मैं हूं आपकी साथी मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, जब हुस्न मुस्कुराता है ना, तो बहारें खुद ब खुद सज जाती है। किसी की मासूम हंसी, किसी की झुकी नजर दिल पर ऐसा असर कर जाती है कि हर तरफ बस वही चेहरा नजर आने लगता है। तो चलिए सुनते हैं इसी एहसास को इस गीत के साथ।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका साथ होना ही बहुत सुकून देता है। ना कोई बड़ी ख्वाहिश रहती है और ना ही किसी और चीज की तलाश। बस एक अपने का साथ हो तो जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगती है। और ऐसे ही एहसास को बड़े प्यार से ब्याह करता है ये गीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 4:27 और 54 सेकंड। कार्यक्रम है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों जब दिल खुश होता है ना तो हर मौसम सुहाना लगता है फिर ना कोई दूरी मायने रखती है और ना कोई परेशानी बस मन करता है कि संगीत के साथ कदम थिरकते रहें और महफिल यूं ही सजी रहे तो आइए इस प्यारे से गीत के साथ कुछ खुशी के पल चुरा लेते हैं

दोस्तों समय की धारा कभी रुकती नहीं है लम्हे आते हैं गुजर जाते हैं लेकिन कुछ गीत हमेशा दिल में बस जाते हैं एक प्यार का नगमा है सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि जिंदगी का आईना है जो हमें सिखाता है कि रिश्ते प्यार और साथ ही असली दौलत है यानी कि ये हमें सिखाता है कि प्यार ही असली दौलत है रिश्तों की तो आइए सुनते हैं इस मधुर और भावुक गीत को

जब दिल में प्यार हो ना तो इंसान अकेला कहाँ रहता है, उसके साथ चलती हैं यादें, सपने और हवाएं भी। कभी किसी की हंसी हवा के झोंकों में सुनाई देती है तो कभी किसी का एहसास मन को चुपके से छू जाता है और फिर दिल ये कह उठता है।

दोस्तों जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन जिंदगी कभी रुकती नहीं है। ये हर दिन एक नया सफर लेकर आती है और जो मुस्कुराकर चलना सीख ले उसे हर रास्ता सुहाना लगने लगता है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए आज की हंसी, आज की महफिल, आज के अपने, यही तो जिंदगी की असली दौलत है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अपने दोस्त मीना चौहान को अरुणिमा कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार। 5:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम भोर सुहाने में। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इससे पहले कल कोलकाता में श्री शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में उन्हें निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों को खारिज कर दिया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने ये खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा।

वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 5:11 और 6 सेकंड। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, वक्त चाहे कितना भी तेज क्यों ना भागे, लेकिन प्यार के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो उम्र भर दिल में महकते रहते हैं। तो आइए इसी एहसास को महसूस करते हैं, जहां मोहब्बत कहती है कि लंबी जिंदगी से ज्यादा कीमती होते हैं वो पल जो किसी अपने के साथ दिल से जिए जाएं।

दोस्तों, हमारी जिंदगी भी किसी किताब की तरह होती है जिसका हर पन्ना नया रंग दिखाता है। कभी खुशियों की रोशनी, कभी संघर्ष की धूल, लेकिन सफर फिर भी चलता रहता है। इंसान अक्सर मंजिल की तलाश में निकलता है, मगर कई बार रास्ते ही उसे जीना सिखा देते हैं। गिरना, संभलना, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ना, यही तो असली कहानी है जीवन की।

दोस्तों, इस दुनिया में अक्सर लोग चेहरों पर भरोसा कर लेते हैं। एक मुस्कान देखते हैं हम लोग, एक खूबसूरत शक्ल देखते हैं और हम समझ बैठते हैं कि सामने वाला बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा दिखाई देता है। लेकिन सच तो ये है कि चेहरों पर कई नकाब होते हैं और दिल तो कभी झूठ नहीं बोलता है। किसी इंसान की असली पहचान उसकी सूरत नहीं बल्कि उसकी सीरत होती है। चेहरा तो वक्त के साथ बदल जाता है लेकिन दिल की सच्चाई हमेशा साथ रहती है।